चाहिए, काने होना चाहिए. कंटेंटमेंट इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है, चाहे वो अमीरी में हो या फ़कीरी में हो. अगर इंसान के पास पैसा आ जाए तो मैं जो चाहे करूं, मैं जहां चाहे खर्च करूं, जिस तरह चाहे मैं ज़िंदगी गुजारूं, ये इंसान को ये चीज़ें मुमकिन है बदनामी की तरफ लेकर चले जाएंगे. इंसान अपनी कमाई हुई दौलत मुमकिन है गंवा बैठे, और फ़कीरी में भी इंसान जब कंटेंटमेंट को इख्तियार करता है तो ये क़िनाअत इंसान की इज़्ज़त को और आबरू को बचा लेती है. कितना खूबसूरत जुमला है मौलाए कायनात का कि क़िनाअत अमीर के लिए भी अच्छी चीज़ है, फ़कीर के लिए भी अच्छी चीज़ है. क़िनाअत अमीर के लिए वो फ़कीर होने नहीं देगी और फ़कीर के लिए ज़लील होने नहीं देगी. वलक़स्दु फिल ग़िना वल फ़क़्र, मियाना रवि के तर्जुमा भी होता है, मॉडरेशन का तर्जुमा भी कस्द में करते हैं. आमतौर पर हमारे कमेंटेटर ने कंटेंटमेंट का तर्जुमा किया, क़िनाअत को हासिल करो कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ताकि तुम्हारी आबरू और तुम्हारी इज्जत बच जाए. कहीं ऐसा ना हो कि इंसान कमाई हुई दौलत को एक प्रोग्राम में और एक इवेंट में लुटा दे और दूसरे दिन इंसान कर्जदार बन जाए. पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने से इंसान मुमकिन है जलील हो जाए और उसकी डिग्निटी पर और उसकी इज्जत और ऑनर पर, रिस्पेक्ट पर बात आ सकती है. तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये पैगाम उम्मत तक पहुंच जाना चाहिए. वल क़स्दु फिल ग़िना वल फ़क़्र, और तीसरी चीज़ जो नजात का ज़रिया बनाती है इंसान के लिए, वो कलिमतुल अदल फिर रिदा व सख्त, हक बात करना, इंसाफ की बात करना, चाहे इंसान खुशहाली में हो या गम और गुस्से में हो. कितने ऐसे मौके आते हैं जब इंसान खुश होता है, अच्छी हालत में होता है, राजी होता है, तब इंसान इंसाफ की बात करता है, हक की बात करता है. जूं ही थोड़ा गुस्सा आ गया, गज़ब में आ गया, जो उसकी ज़बान से जुमले निकलते हैं, जो बात निकलती है, वहाँ पर इंसान को परहेज़ करना पड़ता है. कितने ऐसे मौके पर हमें गुस्सा आता है तो हम वो बात कर जाते हैं जो हमें बात नहीं करनी चाहिए थी. अक्सर इंसान गुस्से की हालत में की गई बातों से पछताता है, वो रिग्रेट होता है, काश मैं ये ना कहा होता, काश मैं ऐसा ना बोला होता. पछताने से बेहतर है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, बात करने से पहले सोच लो, बात करने से पहले बात को तोल लो और मेजर करो और देखो जो तुम कह रहे हो वो इंसाफ की बात है या इंसाफ की बात नहीं है. कलिमतुल अदल फिर रिदा व सख्त, सारे प्रॉब्लम्स जो आज फैमिलीज में है, सारे प्रॉब्लम्स मुमकिन है हमारी सोशल लाइफ में नज़र आती हैं, वो गुस्से में बात करने का नतीजा है. जब गुस्से में ऐसी बात कर जाता है किसी के दिल में, वो बात बैठ जाती है जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है. पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये पैगाम पहुंचा दो. जो इंसान संभल जाता है, संभाल लेता है अपने आप को, वो इंसान कामयाब हो जाता है. दूसरे का फ़ायदा हो या ना हो, हर इन काम में दूसरे का फ़ायदा है, सोसाइटी का फ़ायदा है, मेरी फैमिली का फ़ायदा है, उससे ज़्यादा पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तुम्हारा फ़ायदा है जी. आने का फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत सोसाइटी के, आदिल इंसाफ मुनसिफ इंसान का ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत सोसाइटी के. ख़ुद इंसान का फ़ायदा है कि वो इंसान इन कबातों पर अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नजात के रास्ते खोल देता है. वो अमल मोहलिकात, वो तीन चीज़ें ऐसी भी हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं, इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं फशुहुन मुताअ, ऐसी कंजूसी, ऐसी बखीली कि इंसान जिसकी पैरवी करे, इंसान उसके पीछे भागे. माल को बचाने की सोच, जान को बचाने की सोच, वक्त को बचाने की सोच, ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को बखील बना देती हैं और इंसान उस बखीली पर फ़ख्र करता है, इताअत गुजार बनता है. उसे तो पैरवी करनी चाहिए थी अल्लाह की, उसे तो पैरवी करनी चाहिए थी रसूल की, उसे तो इताअत करनी चाहिए थी उलिल अम्र और इमाम की, ये तो बखीलों की इताअत करने लगा है, ये तो बखीली की इताअत करने लगा है. और इताअत करते करते बंदा खुद बखील बन जाता है, खुद कंजूस बन जाता है और इतना माइजर बन जाता है कि वो किसी चीज को सैक्रिफाइस करने और

करने के लिए तैयार नहीं होता है, ना माल ना जान ना वक्त मुमकिन है। वक्त पड़ने पर इंसान को कई चीज़ों को शेयर करना पड़ता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा उससे छीन ली जाती है वो कुर्बानी का जज्बा है, वो सेक्रीफाइस करने का जो जज्बा उसके अंदर पाया जाता है। बखीली के नतीजे में वो पर वो चीज़ छीन ली जाती है, छीन जाने वाली चीज़ इंसान को नजात अता नहीं कर सकती। हदीस में है, बखील वह इंसान है, कंजूस वह इंसान है, ज़िंदगी गुजारेगा फ़कीराना, किसी को देगा नहीं, खुद खाएगा भी नहीं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं खुद भी नहीं खाते, बचा बचा के रखते हैं, पता नहीं किसके लिए रख रहे, खुद उनके पास उसका जवाब नहीं होता है। वो ज़िंदगी गुजारेगा फ़कीराना, लेकिन उससे हिसाब लिया जाएगा अमीराना। तुमने पैसा कमा तो लिया तो उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुमने कहाँ से कमाया और कैसे कमाया। कितना बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे सहूलतें दी हैं, उसे फैसिलिटीज़ दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग इनाम उसे अता किया है, तो ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं तो ब्लेसिंग्स साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले आती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान वो जो कुछ उसे मिल रहा है वो शेयर करता चला जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे मज़ीद अता करता चला जाएगा। ये जो बखील लोग होते हैं, वो अपने आप को हलाक कर देते हैं, अपने आप को तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हलाकत का ज़रिया बनती है कि पैगंबर इस्लाम फरमाता है, अली ये उम्मत तक पहुंचा दो, वह हवन मुत्तबा, जो लोग डिज़ायर्स को फॉलो करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं। ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती हैं, डिज़ायर्स को कभी इंसान फुलफिल नहीं कर सकता। एक डिज़ायर के बाद दूसरी डिज़ायर पैदा हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो बार बार इंसान को उकसाते हैं, भड़काते हैं कि उसके पीछे भागे इंसान, उसके पीछे दौड़े इंसान। ये चीज़ें इंसान को थका देती हैं। अगर इंसान हवाए नफ्स की पैरवी करने लगे, ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, कभी वो इंसान कामयाब नहीं हो जाता। आखिर में यही ख्वाहिशात इंसान को तबाह कर देती हैं। अगर ख्वाहिशात ना हो, कंट्रोल में रखे इंसान अपने डिज़ायर्स को, अपनी ख्वाहिशात को और अपने हवाए नफ्स को, तो फ़कीर भी बादशाह नज़र आएगा। अगर डिज़ायर्स को कंट्रोल करे तो फ़कीर भी बादशाह नज़र आएगा, अगर डिज़ायर्स के पीछे भागे बादशाह भी फ़कीर हो जाता है, बादशाह भी फ़कीर हो जाता है। अक्सर प्रॉब्लम्स यहीं शुरू होती हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतना भागते हैं कि हमें वही ख्वाहिशात इंसान को थका देती हैं। इसलिए किसी बुज़ुर्ग स्कॉलर ने कहा, यही ख्वाहिशात मुमकिन है इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वह इंसान वो काम कर बैठे जिस काम से अल्लाह तबारक व तआला राधी नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, और अफा के बकौल अपने नफ्स को भूखा रखना हमें सीखना चाहिए। दिल मांगता जाएगा, देते जाओगे तो ये दिल और मांगने लगेगा। कभी उससे कहो चुप हो जा, तुझे आज रोज़ा रखना है, तुझे उसे नफ्स को भूखा रखने की इंसान कोशिश करे तो वह इंसान कामयाब हो जाता। आदत डालना चाहिए इंसान को कि वो अपने नाख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करे, हर उस चीज़ के पीछे ना भागे जो चीज़ इंसान को चमकती हुई नज़र आती है। हर चमकती हुई चीज़ इंसान के लिए सोना नहीं बनती है। वो एजाबुल मरए बे नफ्स से, इंसान खुद पसंदी से, अपनी तारीफ से, खुद को बढ़ा कर समझने से परहेज करे। ये चीजें इंसान को हलाक कर देती हैं। मैं और मुझसे बेहतर कोई नहीं, नहीं वो शायद मुझसे बेहतर हो सकता है। जब इंसान ये सोचता है कि मैं बेहतर हूं, सबसे बेहतर हूं, अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगता है, उजब करने लगता है, जो उजब इंसान को कभी कभार तकब्बुर, गुरूर और अरेगेंसी की तरफ ले जाता है, ये चीज़ इंसान को हलाक कर देती है। मुझसे बेहतर कई लोग हैं, मुझसे बेहतर सोसाइटी में कई ऐसे लोग हैं जो कई एतबार से मुझसे बेहतर हैं, चेहरे के एतबार से जी,
علم کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو اس کے ترقی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اس کے نجات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ لیکن انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ نہیں، میں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو یہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک کر

लाइफ में, ना फैमिली लाइफ में और ना सोशल लाइफ में। कितने लोग हैं जो स्टक हो जाते हैं, आमदन जानबूझकर स्टक हो जाते हैं। कितने हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं कि ना फैमिली लाइफ में ना सॉल्व करना चाहते हैं और ना ही उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, नहीं स्टक हो गए। दो दो साल से, तीन तीन साल से ऐसे फैमिलीज हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना इस तरफ और ना उस तरफ। अगर करना नहीं चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते, कम से कम कंटिन्यू तो करो। ना कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व भी नहीं करना चाहते। बल्कि एक बात मैं और कह दूं, अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी में ऐसे कोई लोग हैं, उन्हें एडवाइस देनी होगी। ना सॉल्व नहीं करते बल्कि टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को, किसी का कि घर इस मरहले पर पहुंच जाए, यहां पर पूरे फैमिली वाले जिम्मेदार हो जाते हैं, पूरी सोसाइटी मुमकिन है रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कुछ मुमकिन है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हमें तुम्हें कुछ करना है, कुछ करना है। देखिए हम कहाँ पर खड़े हैं, कुछ करते भी हैं या कुछ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की मिसाल में देता हूँ दो चार मिनट, कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है फ़अलुल खैर, तुम्हें जर तुम्हारे लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि कुछ नेक काम करो, नेकियाँ करना चाहिए। बुराई की तरफ अल्लाह, कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम बुराई अंजाम दो। अम्र में मारूफ का मतलब यह है कि तुम्हें नेकियां अंजाम देनी होगी। वफअलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, सक्सेसफुल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो नेक काम अंजाम देते चले जाओ। ना तो ना नेक काम अंजाम दो, वी आर रिस्पॉन्सिबल तो डू गुड, नहीं जल्दी करना चाहिए नेक काम अंजाम देने में। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, जब बात नेकियों की आती है तो वो लोग जल्दी करते हैं, इसलिए कि नेक कामों का वक्त बहुत जल्द जाया हो जाता है। इतना डिले ना करो कि फिर नेक काम अंजाम देने में कोई टेस्ट ना मिले, कोई लज्जत ना मिले। कयामत के दिन बाज़ नमाजें हमसे शिकवा करेंगी, कि शिकायत करेंगी कि तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। तो मोइन कहेगा तो मैंने तो तुम्हें पढ़ा था, ज़ाया कैसे कर दिया, का इतना डिले कर दिया कि फिर वो नमाज की लज्जत बाकी नहीं रहती। जल्दी करना चाहिए। ऑन टाइम नमाजों की ताकीद क्यों है, कामों के बारे में मैं मिसाल नमाज की दे रहा हूँ, आप उसको दूसरी जगहों पर भी लगा सकते हैं। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, क्यों हजरत ज़करिया की फैमिली रोल मॉडल है दूसरों के लिए, इसलिए कि घर के सारे मेंबर्स हजरत ज़करिया, हजरत ज़करिया की ज़ौजा, हजरत ज़करिया के बेटे हजरत यहया, सब के सब युसारिऊन फिल खैरात, जल्दी करते थे नेक काम अंजाम देने में। नहीं जल्दी भी नहीं, सबकत लेना है, रैंक्स में हमें आना है, वी द नंबर वन टू डू द गुड डीड्स, पहले नंबर पर आना है। हम हमेशा कहते आखिर में जाएंगे। मैंने किसी तकरीर में कहा था, जब मजलिस में हम बुलाते हैं आगे आओ, नमाज में बुलाते हैं आगे आओ, कोई आता नहीं है, लेकिन बगैर कहे नियाज की लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं। फस्तबिकुल खैरात, कहाँ पर फस्तबिकुल खैरात भैया, अगर पीछे ही खड़े होना है तो हर लाइन में पीछे होना चाहिए, लेकिन अपने नफ्स शामिल करता है बंदा, जहाँ अपनी ज़रूरत का एहसास होता है सबसे पहले, जहाँ पर कहा जाता है आगे आओ पहली सफ में ज़्यादा सवाब है, कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। बी इन द रैंक्स में आना पड़ेगा बंदे को। फस्तबिकुल खैरात, मौलाए कायनात की जो मदह की जाती है, तारीफ़ की जाती है, कई तारीफ़ों में, कई फजीलतों में एक फजीलत यह है कि हर काम में मौलाए कायनात सबसे पहले नजर आए। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रम, सिर्फ आलम लेने में नहीं, सिर्फ तलवार लेने में नहीं, जंग के मैदानों में जब पैगंबर इस्लाम ने कहा कौन है इसके खिलाफ लड़ने वाला, इस जालिम के खिलाफ लड़ने वाला, वहां पर सबसे पहले खड़े होकर मैं कहने वाले मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो सलाम। जी जल्दी करो, सबकत लो, रैंक्स में आना चाहिए तुम्हें, बी द नंबर वन, और लोग दूसरे लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ। नेकी अंजाम दी, जल्दी किया, रैंक्स में आ गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है दूसरों को भी नेकी की तरफ बुलाओ। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, ऐसी उम्मत बनो जो दूसरे लोगों को नेकियों की तरफ इनवाइट करने वाले बनो। खामोश रह जाने से
कभी भी किसी भी सोसाइटी की फलाह और बहबूदी नहीं हो सकती। वो कामयाब सोसाइटी नहीं कहलाएगी जो सोसाइटी खामोश होकर ज़िंदगी गुजारती है। नहीं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ

0: धोखा जो है वो जायज़ नहीं है।
1: बीबी वहाँ पे गई और उन्होंने खाली जाके इस फदक के लिए एहतजाज किया कि देखो फदक जो है वो हमारा हक था जो हमसे ले लिया गया।
2: इसकी अहमियत इधर शायद ज्यादा हो।
0: बीबी का मकाम क्या हो सकता है,
1: किसी और के लिए ये जुमला नहीं मिलता।
2: जब भी मैं उनको देखता था जो परेशानी थी वो दूर हो जाती थी।
0: इंसान शादी किससे करे।
1: बीबी ने उस पे जो है वो मौला कायनात के फजाइल की तरफ इशारा किया।
2: ये एक प्रिंसिपल है
1: जी।
2: ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं है
0: कि वो खुशी जो दूसरों को देने में है वो खुशी खुद हासिल करने में नहीं है।
1: सबसे एक नौयत की मोहब्बत नहीं है,
2: उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए।
0: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमाम महदी फरमाते हैं इन लिफी इब्नत रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। वक्त के इमाम फरमाते हैं कि बीबी फातिमतुज़्ज़हरा हम सब के लिए उसवा हसना है। नेचुरल सी बात है, जब वक्त के इमाम के लिए उसवा हसना और रोल मॉडल हैं तो हम सब के लिए भी हैं। इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िंदगी से दो एस्पेक्ट्स पर आज डिस्कशन करेंगे। एक उनकी ज़िंदगी की फैमिली लाइफ और दूसरा सोशल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कैसे फैमिली लाइफ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है, और आज के जवानों के लिए कैसे दर्स हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से हासिल कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। लास्ट तक देखिएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अली ज़ैदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं।
3: वालेकुम
0: अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और हमारे साथ हैं मौलाना रज़ा महदी रिज़वी साहब जो हैं हमारे, अलैकुम सलाम। दोनों हमारे बुज़ुर्ग हैं, और इसी टॉपिक को शुरू करते हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में पहला पॉइंट जो है वो एक रोल मॉडल की जब हम गुफ्तगू करते हैं तो रोल मॉडल को हम उसवा हसना की जब बात करते हैं तो एक सीरत उनकी हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। तो सीरत इस्लाम में क्या है और कैसे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हमारे लिए सीरत बन सकती है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। ये क्या बहुत ही खूबसूरत आगाज़ है, जिस तरीके से आपने जो ये सवाल किया उसकी वजह यह है कि उलमा ने खुद रहबर मुअज़्ज़म और उस्ताद मुर्तज़ा मुताहरी इनकी तरफ इशारा किया है कि अहले बैत की ज़िंदगी से हम लोग बहुत सारे वाक़यात को तो जानते हैं, लेकिन इस वाक़यात के जानने को सीरत का जानना नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इसमें वो फरमाते हैं कि देखिए जो सीरत है ये लफ्ज़ सैर से आया है। सैर का मतलब ये होता है कि चलना, और सीरत जो है अरबी में जब भी कोई चीज़ इस वज़न के ऊपर आती है सीरत यानी फ़ेला के वज़न के ऊपर, इसका मतलब होता है एक ख़ास तरीके से किसी फ़ेल को अंजाम देना। सैर यानी चलना, सीरत यानी ख़ास अंदाज से चलना, बैठना संजलसा बैठना, जलसा यानी ख़ास अंदाज से बैठना।
0: अब बीबी की ज़िंदगी की सीरत को हम अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हम देखते हैं। एक सबसे पहली गुफ्तगू जो है बीबी की शख्सियत के सिलसिले में, उनकी मानवी शख्सियत, उनकी स्पिरिचुअल स्टेटस के सिलसिले में है। जो अजीम शख्सियत जो बयान की गई है, खुद रहबर मुअज़्ज़म के जुमले हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि बीबी की ज़ात और बीबी का मकाम क्या हो सकता है। हदीस की रोशनी में वो आयतुल्लाह खामेनाई फरमाते हैं कि कोई नबी नहीं है जो इस लायक, कोई नबी नहीं है उस मर्तबे पे जो मर्तबे पे बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा सिवाय रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के। तो वो मानवी शख्सियत जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पर कुछ अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, खुसूसन हम शोहदा की ज़िंदगी को जब देखते हैं तो शोहदा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जो तवस्सुल जो बीबी फ़ातिमतुज़्ज़हरा के साथ किया गया और उसका असर जो देखा गया ज़िंदगी के अंदर, शोहदा की ज़िंदगी के अंदर, उलमा की ज़िंदगी के अंदर, ओरफा की ज़िंदगी के अंदर, वो मानवी शख्सियत, वो अजीम ज़ात कायनात में कोई रसूल और अली के अलावा उस ज़ात के बराबर नहीं है। इस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा अगर हम गुफ्तगू करें, पहला उनकी मानवी शख्सियत को समझने की।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसे आप दोनों ने फरमाया, उसी तरह कुरान में भी अगर हम कुरान से इस मौजू के ऊपर एक सबक लेना चाहें तो खुद जो सूरह कौसर है उसमें पहली जो आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतेना कल कौसर, तो ये जो कौसर है इसकी जो मुफस्सरीन ने जो तफसीर की है, इसकी जो तावील है अगर आप कहें, तो इसका मानी जो है वो कहते हैं कि खैर कसीर, और उसकी जो तावील है वो कहते हैं वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो
1: मुतलक
0: इसको जिस जैसे आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें कि ये बिल्कुल मुतलक बयान किया गया है,
1: माने
0: तो सिर्फ इसी से, इस एक आयत से जो है आप ये सारे नुक्ते भी निकाल सकते हैं कि ये खैर कसीर हैं। तो इस बुनियाद पे जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब अपनी इनफरादी ज़िंदगी में या इज्तिमाई ज़िंदगी में, या सिर्फ रसूल के लिए, या सिर्फ अपने शोहर के लिए, या सिर्फ अपने बच्चों के लिए, या सिर्फ उम्मत के लिए, विलायत के लिए, बल्कि हर जगह जो है ये खैर कसीर हैं।
1: जी अली भाई, ये भी जो है कि आइम्मा की नज़र में हदीसें मौजूद हैं कि बीबी का मर्तबा कितना बुलंद है खुद आइम्मा के सिलसिले में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आपने फरमाया कि एक आपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से नकल की है, एक इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से है कि नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़े, कि हम जो हैं वो खुदा की हुज्जत हैं पूरी
1: ज़मीन
0: खल्क के लिए, वजद्दतुना, और हमारी जो दादी हैं, हमारी जो दादी हैं या
1: जद्दा
0: मतलब
1: हैं
0: जी,
1: जी
0: वो जो हैं वो हमारे ऊपर,
1: जी
0: हुज्जतुल्लाह अलैना, मतलब हमारे लिए हुज्जत हैं। तो इससे जो है वो समझ आता है कि जैसे कुरान फरमाना है कि वलकद कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन
1: उसको
0: हसना, उधर ये बयान हो रहा है कि रसूल जो है आपके लिए उसवा हैं, और इधर जो है आइम्मा ताहिरीन फरमा रहे हैं कि हमारी जो
1: हाँ
0: जद्दा हैं, हमारी जो दादी हैं,
1: वो हम सब के लिए
0: वो
1: हुज्जत,
0: हमारे लिए एक हुज्जत हैं
1: यानी
0: खुदा
1: पूरी
0: की।
1: कायनात में सबसे नूर जो है या रसूल है या इमाम मासूमीन है, खुद 11वें इमाम कह रहे हैं या 12वें इमाम
0: बिल्कुल
1: कह रहे हैं कि हम सब पर जो ज़ात मुकद्दस मुकद्दम है या हम सब पर जो हुज्जत है वो हज़रत
0: खुदा की
1: फ़ातिमतुज़्ज़हरा।
0: हुज्जत।
1: और
0: और इससे एक मिसकंसेप्शन जो है वो भी हाईलाइट होता है कि हमारे यहाँ अक्सर ये शायद सोचा जाता है कि हज़रत ज़ाहरा हैं तो वो ख़वातीन के लिए एक उस्वा हैं, और बाकी जो आइम्मा ताहिरीन
1: वो
0: अलैहिस्सलाम हैं
1: मर्दों के
0: वो
1: यहाँ
0: मर्दों के
1: मर्दों
0: लिए
1: के
0: हैं। तो
1: लिए
0: इससे साबित होता है कि जो हमारे उस्वा हैं, जो आइम्मा ताहिरीन हैं, वो खुद कह रहे हैं,
1: जी
0: खुद फरमा रहे हैं कि नहीं, ये जो बीबी हैं, ये जो हमारी माँ हैं, ये हज़रत ज़ाहरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, ये हमारे लिए भी हुज्जत हैं,
1: जी
0: हमारे लिए भी उस्वा हैं। तो इससे ये समझ आता है कि इनकी जो, जैसा आपने फरमाया कि इनकी जो ये चंद बोधी डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं इनकी पर्सनैलिटी के, और एक शख्सियत में जो जमा हुई हैं, वो एक रोल मॉडल हैं सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि
1: तमाम इंसानों के
0: तमाम
1: लिए।
0: इंसानों के लिए। अब उसमें अलबत्ता ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ जो बोध हैं या कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो जाहिर सी बात है कि
1: ख़वातीन के लिए
0: ख़वातीन के लिए शायद
1: जी
0: ज़्यादा
1: बीबी का आलिमा होना, यानी एक इल्म के उनवान से
0: जी
1: बीबी को अगर हम लोग आके प्रेजेंट करें कि मसलन एक खातून के लिए एक बीबी, या मसलन खातून ना कहें पूरी इंसानियत के लिए बीबी का इल्म का होना
0: जी
1: किस
0: जी
1: तरीके से हमारे लिए रागोशा होता है, कैसे हमारे लिए उनकी सीरत हम लोग उसको है।
0: बिल्कुल। बीबी की जो ज़ियारतनामा है उसमें भी जिक्र हुआ है, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मुहद्दसतुल अलीमा, अलीमा मतलब के इल्म रखने वाली।
1: जी
0: और ज़ाहिरन तारीख़ में भी जिक्र हुआ है कि जो ख़वातीन थीं वो आती थीं, उनसे सीखती थीं, लेकिन जो सबसे, जिसे आप कहें एपिटमी, या जो जहाँ पे
1: औज मेराज
0: औज
1: हैं
0: जो है, मेराज जो है, वो इब्राज हो रहा है, इजहार हो रहा है बीबी के इल्म का, वो खुतबे में है, जो खुतबे फदकिया से
1: जी
0: के नाम से मारूफ है।
1: नहीं, खुतबे फदक जिसकी तरफ आपने इशारा किया वाकई यानी मेराज है ये। अच्छा, आमतौर से तसव्वुर खुतबे फदक में ये है कि बीबी वहाँ पे गई और उन्होंने खाली जाके इस फदक के लिए एहतजाज किया कि देखो फदक जो है वो हमारा हक था जो जो हमसे ले लिया गया। लेकिन खुतबे फदक इससे कहीं बढ़कर है। उस वक्त जिस वक्त बीबी ने बयान किया इंतहाई फसीह व बलीग खुतबा, उसी वक्त लोगों ने इसे हिफ्ज़ किया क्योंकि अरब दिलदादा थे फसाहत व बलागत के। उसके बाद उलमा के दरमियान उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी ने, अगर मुझे हाफ़ज़ा सही साथ दे रहा, कहा है कि ये इसका कमाल ये है कि यहाँ पे उलमा ने ये बहस की है कि ये जो है वो बालातर है या नहजुल बलागा,
0: जी
1: यानी ऐसा खुतबा। और उसके अंदर अगर आप देखें थोड़ा सा, आप देखें उसके अंदर जब बीबी ने शुरू किया है तो हम्द से शुरू किया है। एक मकाम पर खुद बीबी आती हैं और बताती हैं देखिए कि जो खुदा ने जो अहकाम जो दिए हैं, उनके पीछे असरार क्या है, या मारिफ जो है उसके असरार क्या है। एक जगह फलसफा अहकाम भी बताया कि इन अहकाम के असरार क्या
0: जी
1: है, और एक जगह मारिफ के असरार।

0: तरह बताए, फजाल अल्लाहुल ईमान तथीरन लकुम मिन अश्शर्क, परवरदिगार आलम ने ईमान को इसलिए करार दिया कि यह शिर्क से तहारत का रास्ता है। और फिर फरमाते हैं वस्सलात तंजीहन लकुम अनिल किब्र, देखिए नमाज तो है लेकिन नमाज है किस लिए, कि तुम्हें पाक करती है किब्र से और तकब्बुर से पार करती है। व ज़कात तज़कियतन लिन्नफ़्स व नमाअन फ़िर्रिज़्क़ व सियामा तस्बीतन लिल-इख़लास। और फिर इसको अगर छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं व ताअतना निज़ामन लिल-मिल्लाह, ये परवरदिगार आलम ने जो हमारी इताअत को फ़र्ज किया है उसकी वजह यह है कि अगर मिल्लत के अंदर, कौम के अंदर अगर यूनिटी आ सकती है, उसमें नज़्म और ऑर्डर आ सकता है, तो वो सिर्फ इसी सूरत में है कि वह हमारी इताअत के ऊपर जमा हो जाए। व इमामतना अमानन लिल-फ़ुरक़ा, और उसके बाद जो है हमारी जो इमामत है वो इसलिए ताकि तुम में तफरका ना हो। और फिर हज किस लिए है, जिहाद किस लिए है, ये सारे यानी ये इल्म की उस बुलंदी पर है कि वाकई जैसे अभी इशारा हुआ कि बीवी के लिए आइम्मा फरमाते हैं कि हमारे लिए उसवा हसना है, और कुरान जो है वो कुरान में खुदा कहता है कि रसूल तुम्हारे लिए उसवा हसना है, तो क्या टकराव है कि रसूल नहीं है? इसका मतलब ये है कि वही नूर रिसालत जो है वो बीवी के अंदर जलवा अफरोज़ है, कि वही हमें यहाँ नज़र आता है कि वो जिस तरीके से उन अहकाम को, तौहीद को, इखलास को बयान कर रही हैं कि वाकई यानी या पैगंबर कर सकते हैं या मसलन आइम्मा कर सकते हैं।
1: तो अभी हम चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जब देखते हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी है, 2 हिजरी में जो है बीबी की अक्द होता है मौलाए कायनात के साथ, और फिर 11 हिजरी में बीबी की शहादत होती है, और 9 साल की एक इज़दिवाजी ज़िंदगी है, एक मैरिड लाइफ है, और ख़ुद इस मैरिड लाइफ के अंदर और ख़ुद बीबी की ज़िंदगी के एक कमालात में से ये कमाल भी है कि बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी लेकिन बहुत पुरबरकत ज़िंदगी जिसके असरात जो हैं बहुत अजीम। तो ये 9 साल की ज़िंदगी में सबसे पहले हम लोग बीबी की ज़िंदगी में इज़दिवाज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंसान शादी किससे करे, तो ये एक क्वेश्चन है। और बीबी के लिए ख़ुद जब तारीख में है कि बीबी को लोग तंज करते थे कि आपने किनसे शादी कर ली, गरीब से शादी कर ली, अली से शादी कर ली, जबकि आपके पास ऑप्शन था, आपके पास बड़े बड़े अरब के कबीलों के सरदार और रईस जो हैं वो ऑप्शन था। तो ये एक बीबी की सीरत, यहाँ पर मैरिड लाइफ शुरू करने से पहले सेलेक्शन ऑफ मैरिज, यहाँ से भी हम लोग बीबी की ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं कि किससे शादी करें।
2: जी, इसमें हदीस है हमारे पास, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि अगर अमीरुल मोमिनीन ना होते
1: जी
2: तो कोई इस मतलब उस मर्तबे पे नहीं था कि वो बीबी के जो है वो
1: कुफ
2: बराबर हो सके। और फिर वो हदीस में आगे कहते हैं ना हजरत आदम ना उसके अलावा कोई, मतलब वो पॉइंट को पहुंचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जमाने में कोई कोई भी,
1: यानी कोई भी नबी अंबिया कोई भी नहीं होता, यानी कोई भी उस लेवल पे नहीं है कि जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बराबरी कर सके, कुफ हो सके।
2: ज़ाहिरन यही है
1: जी।
2: तो इससे समझ आता है कि मतलब ठीक है, दुनिया वाले तो उड़ाते हैं मजाक या अब उनकी अपनी महदूद जो समझ है, लेकिन बहरहाल जैसे मौलाना ने भी फरमाया कि ये एक ही नूर से हैं, तो बनता ही नहीं है के किसी और के साथ
1: जी।
2: मतलब वो
1: हाँ, तो वो कुफ
0: मयारात जो है बिल्कुल यकीन मयार ये है कि देखिए कुफ को जब देखा जाता है तो आमतौर से हम लोग मसला ये कि जब हम अहले बैत पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसको एक ऐसी सतह पर ले जाते हैं जो कि हकीकी सतह बल्कि उस हकीकत तक पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन वो रब्ता टूटने लगता है अपनी जिंदगी से,
1: उसूल लेने की क्वालिटी खत्म कर
0: देते हैं। ऐसा होता है कि जी वो तो मतलब अहले बैत हैं, वो तो ये हैं, लेकिन ख़ुद बीबी को जब लोगों ने आकर एतराज़ किया तो ख़ुद बीबी ने उस पर जो है ना वो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल की तरफ इशारा किया कि वो कि जिसने सबसे इस्लाम लाने में सबसे पहले हैं, जो ईमान में इस मरतबे पे हैं, यानी ख़ुद ये उसूल ये है कि जब भी कुफ देखा जाए कि कौन किसके बराबर है तो उसके अंदर ये जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं ये बाद में आती हैं, उसका शायद इतना असर नहीं है, असल ये है कि ईमान के अंदर जो है वो बराबर हैं या नहीं है, कि कुफ अगर ढूंढा जाए तो ईमान को मद्देनज़र रख के हम लोग कुफ ढूंढे, यानी हमारे बिल्कुल क्योंकि मुब्तला पे मसला है कि हमारे घर में जिस तरीके से ख़ानदान में शादियां होती हैं तो जो सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो यही कि अगर देखें तो वो ईमान के अंदर बराबरी देखें कि मोमिन का जो है कुफ जो है वो मोमिना है और मोमिना का कुफ जो है वो मोमिन है। और ये बीबी ने ख़ुद अगर पैगंबर ने शादी की थी तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि बीबी ने कहीं एतराज़ किया हो, बल्कि हर जगह अपनी रज़ायत का कामिलन जो है वो इजहार किया इस रिश्ते के।

0: जी, अब हम यहीं पर यानी कि दो शख्सियत हैं, दो नूर हैं, एक अली एक फातिमा, यानी ये ज़ात हैं। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, और हम एज हम जो एक मैरिड कपल हैं जो बैठे हुए हैं, या इंशाल्लाह जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, खुदा दुआ है कि बीबी जहरा के सदक़े में इंशाल्लाह उनकी जल्द शादी हो जाए, तो एक रोल मॉडलिंग कैसे हम कर सकते हैं मौलाए कायनात के अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को लेके, और इस फैमिली लाइफ जो बीबी की और मौलाए कायनात बीबी की और मौलाए कायनात की है, उसको हम लोग रोल मॉडलिंग के उनवान से कैसे देखते हैं?
1: एक इसमें मेरे ख़्याल से सबसे जो एक अहम नुक्ता जो इनकी जो ज़िंदगी थी दोनों के साथ, उसमें से जो हम निकाल सकते हैं वो ये है कि अब बहरहाल वही जो आप फरमा रहे थे कि कनेक्शन ना टूटे। तो अगर हम आज के ज़माने में देखें तो अक्सर जो है, अब जाहिर सी बात है, फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तो कभी कभार जो शिकवा होता है, चाहे वो शौहर की तरफ से हो या बीवी की तरफ से हो, वो ये होता है कि ये मतलब मेरा हाथ नहीं बटाते या हाथ नहीं बटाती या बहुत बिजी रहते हैं, इस किस्म के मसले। और उसकी वजह से जो है जब आते हैं घर तो थके हुए होते हैं, और फिर मेरे ऊपर गुस्सा या इस किस्म के मसाले। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में देखें तो आप देखें कि जो 9 साल की मतलब जैसे आपने ज़िंदगी बताई इनकी साथ, तो उसमें जिस किस्म की मशगूलियत जो अमीरुल मोमिनीन की थी मुख्तलिफ थी। सिर्फ अगर आप जंगों को ही ले लें तो वो मुतअद्दिद जंगें थीं जहाँ पे उसमें मसरूफ़ रहते, तो उसके अलावा जो बाकी ज़िम्मेदारियाँ थीं, उसके बावजूद जब भी घर आएँ तो जैसे इमाम सादिक की जो हदीस जो मैं बयान करना चाह रहा था, उसमें खुदा की कसम खाते हैं, या बल्कि अमीरुल मोमिनीन से खुद से रिवायत है, कहते हैं फवल्लाही, मतलब खुदा की कसम के कभी ऐसा नहीं हुआ कि जहरा ने मुझे नाराज़ किया हो या मेरी किसी बात को जो है वो मना किया हो या इनकार किया हो। बल्कि आगे जाके बोलते हैं कि हकीकत यह है कि वलकद कुंतु अनज़ुरु इलैहा, जब भी मैं उनको देखता था तो मेरे जो हम थे, जो गम थे, जो परेशानी थी, वो दूर हो जाती थी। तो ये एक हमारे लिए एक सबक है, हमारे लिए आज के जो मियाँ और बीवी हैं उनके दरमियान इस किस्म की ज़िंदगी होनी चाहिए, जैसे कुरान में भी आयतों में जिक्र हुआ है कि एक दूसरे के लिए जो है वो सुकून का बायस बने।
2: सही, यानी अगर इस रबते को अगर हम अपने एक आम दवार में समझाएं तो बीबी और मौलाए कायनात के दरमियान जो रबता है वो तमाम यानी अपनी पूरी हकीकत में आशिकाना रबता है। ये
0: जी
2: इंतहाई मोहब्बत का रबता है कि इस रबते के अंदर देखें जितने मोहब्बत के अनासर हैं कि मोहब्बत का इज़हार करना
0: जी
2: यानी हमें नज़र आता है। जब एक दूसरे को ख़िताब करते हैं तो उसमें नज़र आता है कि कभी बीवी जो है अबल हसन कह के, कभी इब्ने अम कह के मुखातिब करती हैं। इसी तरीके से जो है हम जब उसमें ये देखते हैं कि एक दूसरे के कामों के अंदर शरीक होना, यानी मौलाए कायनात साहब ने इशारा किया जब घर के अंदर आते हैं, ख़ुद पैगंबर ने कितनी दफ़ा देखा घर के अंदर तशरीफ़ आए तो देखा कि मौला जो है वो मिसाल के तौर पर दाल साफ़ कर रहे हैं बीवी के लिए। और एक दफ़ा इस तरीके से था, ज़ाहिरन शायद शायद आटा पीस रहे थे या इस तरह का काम था कि दोनों एक काम कर रहे थे, तो जब पैगंबर ने पूछा कि तुम में से दोनों में से ज़्यादा कौन थका हुआ है कि मैं उसकी जगह पर काम करूँ, तो इससे पहले कि बीबी जवाब देती मौलाए कायनात ने कहा कि जहरा। यानी इन तमाम चीज़ों में एक दूसरे के लिए इस बात का एहतराम रखना कि उसने कितनी ज़हमत की है घर के लिए, तो ये हर तरफ से जब हम ये देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हज़रत ज़हरा जो बाहर के वाक़यात हैं वो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर हैं, जिस तरीके से मौलाए कायनात शरीक हैं घर के तमाम चीज़ों के अंदर, हज़रत ज़हरा तमाम बाहर की मुश्किलात में शरीक है कि वो जो हम मशहूर वाक़या, लेकिन हम उसको चूँकि मसाइब में सुनते हैं तो हम फ़ौरन जो हैं मतलब उसमें फ़ौरन रोने लगते हैं, गिरिए में चले जाते हैं। लेकिन जो बीबी गिरिया कर रही हैं कहा कि अबुल हसन इसलिए रो रही हूँ कि लोग आपका एहतराम नहीं करते, आपको सलाम नहीं करते। यानी दोनों की ज़िंदगी गोया वाकई जो मिसाल दी जाती है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि वही जो मौलाए कायनात ने कहा था कि बेहतरीन ऑन मैंने पाया अल्लाह की इबादत
1: मददगार
2: में, कि ज़िंदगी के हर पहलू में इंतहाई आशिकाना एक दूसरे के साथ जो है वो एक एक पहलू में जो है शरीक हैं, ज़िंदगी के पूरे सफ़र में एक दूसरे के हमदम और साथी हैं।
0: जी, आपने कई पॉइंट्स की तरफ इशारा किया। एक तो ये है कि गुफ्तगू करने का अंदाज़, यानी एक हमारे लिए जो उसवा हम लोग लेना चाह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को रिस्पेक्ट और एहतराम से पुकारें, और उसके अलावा अप्रिशिएट करना, जैसे आपने कहा कि फौरन मौलाए कायनात ने अपनी वाइफ

0: को, अप्रिशिएट किया उनके हार्डवर्क को। तो ये हम लोग देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये मिसिंग है कि वाइफ को जो एहतराम, जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है घर पे रहती है, काम करती है, करती क्या है, यानी वो करती क्या है कि अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं यानी। लेकिन वो जो जो हम लोग रोल मॉडलिंग लेना चाह रहे हैं, मौलाए कायनात किस तरीके से अपनी बीवी को देखती थी।
1: बिल्कुल, इसमें जैसे यही दोनों नुक्ते, जैसे अगर आप आज के उससे कनेक्ट करें तो एक तो वर्बलाइज करना, मतलब बोलना वो चीज़ें,
0: नहीं, मर्द तो
1: लेकिन
0: इमोशनल नहीं होते, कहते मर्द क्यों बोलें, ये भी एक एक वो क्रिएट किया गया है हमारी सोसाइटी में। एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है, इसकी अहमियत इस्लाम में कितनी है कि वाइफ को इंसान अपने मोहब्बत का इजहार करे।
1: बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं, सिर्फ मतलब शौहर और बीवी के बीच में नहीं, बल्कि जिस जिस जगह पे आप देखते हैं कि एक इंटरपर्सनल कोई रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में, तो उधर इसका इजहार करना, या मोमिनीन के बीच में दो भाई हैं, सगे भाई नहीं, मतलब दो मोमिन भाई हैं, उसके अंदर इजहार करना
0: बिल्कुल
1: किसी को किसी से मोहब्बत है, इसकी ताकीद गई की गई है। तो ये जैसे आपने पहले भी फरमाया था कि ये एक प्रिंसिपल है,
0: जी,
1: ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं है बल्कि सारी रिलेशनशिप्स के लिए, लेकिन इधर भी अप्लाई होता है, और शायद एक लिहाज से इसकी अहमियत इधर शायद ज़्यादा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक करीबी रिश्ता है, तो उसमें जो पोटेंशियल होता है मसाइल का वो ज़्यादा होता है। तो इसमें पॉइंट ये है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ ज़बान से जिक्र हो, वो भी ज़रूरी है, या कहीं कहीं जैसे आपने फरमाया कहीं ऐसा होता है कि नहीं मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ, मतलब बाहर जाता हूँ, तो किसके लिए करता हूँ, बीवी के लिए करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सिर्फ काम करना भी काफ़ी नहीं है, या सिर्फ बोलना भी काफ़ी नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इजहार होना चाहिए मोहब्बत का, या अगर किसी का ख्याल रख रहे हैं उसको वर्बलाइज भी करना चाहिए, उसका इजहार भी होना चाहिए, और वो अमली तौर पर भी नज़र आना चाहिए।
0: खुसूसन ख्वातीन के लिए ये जो, क्योंकि उन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि इमोशनल होते हैं और वो उनके लिए ज़रूरी होता है।
2: ठीक है, मुझे जो बहुत आप यानी ये बहुत अहम नुक्ता है, खातून का पता है, हमारे जो मसलन हमारे मज़हब में जो उलमा ने बयान किया, मेरे जहन में नहीं हो सकता, इसके पीछे यकीनन कोई हदीस से ही इसको इल्हाम लिया गया होगा कि खातून को रब्बुल बैत कहते हैं, यानी घर का सारा सुकून जो है वो खातून के दम से है। जिस तरीके से मौलाए कायनात ने जो है यहाँ पे आपने इसकी हदीस की तरफ इशारा किया, लखत कुन तो अनजुरो इलैहा, कि ये नहीं कहा कि एक दफ़ा मैंने देखा, जब भी देखता था,
1: बिल्कुल
2: कि जिसमें
1: बिल्कुल
2: वो सख्त तरीन हालात भी हैं। अच्छा, तो खातून जो है जो पूरे घर का यानी बच्चों के लिए,
0: कंप्लीट कर दें रजा भाई, जब भी मैं देखता था।
2: हाँ, फतक्षफ अनिल हुमूम, जितने हुमूम थे वल अहजान, जो गम था वो तक्षफ अनि, वो मुझसे दूर हो जाता था, यानी जब मैं जहरा के अंदर
0: बीबी को देखते थे
2: देखते
0: तो
2: थे उस
1: जो,
2: चेहरे को देखकर मैं जो हूँ अपने गम भूल जाता था। अब
0: यानी
2: ये
0: कि
2: जो है
0: बीवी इस तरीके से शौहर को वेलकम
2: इस
0: करे।
2: तरीके से, इस मोहब्बत के साथ, इस शादाबी के साथ जो है, कि बाद दफ़ा इसमें बहरहाल ये भी होता है कि जब शौहर घर आया है तो आपको काम कर रही है किचन में, सही है शौहर के लिए खाना बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए जो है वो उसको छोड़ के मसलन एक मुस्कुरा के इस्तकबाल करना, इसकी अपनी अहमियत है दोनों तरफ से। तो लेकिन उसमें जो नुक्ता था जो आपने कहा कि खातून का ज़रूरत होती है, कहते हैं खातून रब्बुल बैत है, घर का सारा निज़ाम, घर की खुशहाली शादाबी खातून से, लेकिन खातून को ये काम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है शौहर की मोहब्बत। जब वो शौहर की मोहब्बत को महसूस करती है तो उसके बाद वो उस घर को ऐसा बना सकती है कि जो घर जो है वो शौहर के लिए या बच्चों के लिए क्या है, जन्नत है। तो खातून को जो है वो उस शौहर की मोहब्बत की ज़रूरत है, अगर वो मोहब्बत उसको महसूस होती है तो फिर वो घर को जो है ले तस्कुनु इलैहा, ताकि वो शौहर को वहाँ पे सुकून मिले, ताकि वहाँ पे एक ऐसी नस्ल तरबियत पाए कि जो हर लिहाज से सालिम हो, जो माशरे में किरदार अदा कर सके। इसमें खुद जो मोहब्बत के इजहार का, जैसे मौला कायनात की तरफ से बात, जगह यह कि मौला तोहफा देते थे, सही है, जो कुछ था, अलबत्त ये भी है कि जो मौला ने दिया था बीबी ने वो फिर बहरहाल कोई ज़रूरतमंद आया मांगने वाला दे दिया, लेकिन ये इजहार के मौला कायनात ने तोहफा दिया। तो दोनों की तरफ से इजहार है मोहब्बत, या जिस तरीके से बीबी के लिए यह है कि बीबी फरमाती हैं कि रूही ले रूह कल फिदा, मेरी जान अब आपके ऊपर फिदा हो जाए, वह नफसी लनफ्स कल वका या अबल हसन, आपकी हर मुसीबत, अगर इसको हम आम तर्जुमा करें तो आपकी हर मुसीबत जो है वो मेरे ऊपर आ जाए, यानी ये कितने मोहब्बत का जो है ये जो है वो अंदाज है एक दूसरे
1: और
2: के
1: इसमें
2: लिए,
1: शायद वही जो उसूल हमने पहले जिक्र किया था कि दूसरे को अपने ऊपर
2: तरजीह देना,
1: मुकद्दम रखना,
2: अहसन
1: तरजीह रखना,
2: अहसन
1: तो ये
2: जी
1: अगर आप देखते जाएं तो वही प्रिंसिपल्स हैं जो काफ़ी जगह पे अप्लाई हो सकते हैं
0: जी।
1: और इसमें ये

0: से आपने जिक्र किया था कि शायद ब्रादरान की तरफ से कभी कभार होता है कि नहीं हम इमोशनल नहीं हो सकते, तो ये फिर वही एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने आप को मुकद्दम रखना, अपने आप को तरजीह देना कि चलें फ़र्ज़ करें आप नहीं भी हैं, किसी और की खातिर आप कह तो सकते हैं,
1: जी
0: तो इस लिहाज से वही जो प्रिंसिपल्स
1: यानी
0: हैं
1: हाँ उस उनको मुकद्दम समझना और
0: बिल्कुल
1: उनकी खुशी के लिए आप एफर्ट्स लेना।
0: बिल्कुल
1: शायद हो सकता है कि आप वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत ना रखता हो, लेकिन ये जहन में रखना कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए किया तो अच्छा। इस्लाम में इसको इबादत भी करार दिया गया है,
0: बिल्कुल
1: यानी हमारे यहाँ रिवायतें हैं कि मसलन अगर कोई शख्स अपनी जौजा के साथ जो है, अगर मिसाल के तौर पर एक सुफरे पे एक फैमिली बैठी हुई है, तो सिर्फ मुस्कुरा के एक दूसरे को देखने का सवाब जो है जिक्र किया गया, ऐसा है जैसे कि आपने उम्रा कर लिया हो, या
0: बिल्कुल
1: ऐसा है कि मसलन आपने या मसलन आपने इस किस्म की ताबीर जो है
0: बिल्कुल
1: हमारे यहाँ रिवायतों के अंदर
0: शायद
1: है।
0: शायद इसलिए कि कुछ लोगों के लिए वाकई उम्रा करना ज्यादा आसान है
1: जी
0: मुस्कराने से, जो कि गलत है। अगर ऐसा है
1: जी
0: तो गलत है इंशाल्लाह
1: जी
0: कि हम यही सीरत जो है, बिल्कुल फ़र्क जो आपने बयान किया था कि सेर और सीरत में फ़र्क ही है, सीरत इसलिए हम उसे समझना चाहते हैं ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें अपनी अपनी
1: और
0: ज़िंदगियों में।
1: देखें असल में इस्लाम में शायद एक आध दफ़ा पहले भी कहीं पे ये तذکرہ हुआ कि इस्लाम में जो माशरा है, हम समझते हैं माशरे का किससे तश्कील पाता है, फ़र्द से तश्कील पाता है। अगर माशरे का हम एक यूनिट देखें तो वो फ़र्द है, लेकिन जब इस्लाम के अंदर देखते हैं तो हमें इस्लाम में नज़र आता है कि माशरे का जो यूनिट है वो फ़र्द नहीं है बल्कि बैत है,
0: फैमिली
1: अहलुल बैत। बस अगर बैत ये घर सालिम होंगे तो सालिम माशरा वजूद में आएगा। इसलिए इतनी ताकीद है कि ये इस घर की फ़िज़ा को सालिम रखा जाए। देखिए हम वही कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए उस्वाए अमल भी हैं, हम अगर फ़ज़ाइल के वो बाप हैं, वो मकामात मानवी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके अमल में देखिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत, इमाम हसन इमाम हुसैन जैसे अफराद की तरबियत, कि ये जो हमारे पास रिवायतों में है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को एक दफ़ा मौला कायनात ने उन वाक़ियात की तरफ इशारा किया तो उन्हें कहा कि ये सारी बातें जो हैं वो माँ बता चुकी हैं जाने से पहले, हम आदा कर चुकी हैं, जिसको हम सब मसाइब के बाब में सुनते हैं। लेकिन जब घर की फ़िज़ा इतनी मोहब्बत से लबरेज फ़िज़ा होगी कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, माँ और बच्चों के दरमियान मोहब्बत, बाप और बच्चों के दरमियान मोहब्बत, वहीं पर ऐसे सालिम अफराद की तरबियत हो सकती है कि जो माशरे में जाकर इस तरीके के कारहाए नुमाया अंजाम दे सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: अगर घर टूटे हुए होंगे, ये तो अब तो साइकोलॉजी के अंदर चीज़ें मशहूर हैं, जहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते वो बच्चे जो है हमेशा अपने अंदर खुद एतमादी का एहसास नहीं करते। बच्चे से मोहब्बत नहीं, आपस की मोहब्बत, आपस में एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, उसका असर क्या है बच्चे के ऊपर है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैत जो है वो सालिम हो। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, यकीनन जनाब खतीजा और पैगंबर अकरम भी उसकी मिसाल हैं, और उसके बाद इमाम हुसैन और उनके अजवाज और इस तरीके से बाकी आइम्मा भी, लेकिन शायद एक जिहत से सबसे बड़ी जो मिसाल है वो यही
0: कामिल तर
1: कामिल तरीन अगर मिसाल कहा जाए कि मकामात में बहरहाल हज़रत ज़हरा जो है वो इस्मत के दर्जे पर फाइज़ हैं, कि जो कोई और उस तरह से नहीं है इस्मत के उस मरतबे पर, तो
0: बिल्कुल
1: वही सबसे कामिल तरीन मिसाल जो है वो यही बैते अली व फातिमा है। यहाँ तक रिवायत में है कि बीबी और मौलाए कायनात के सिलसिले में कि गुफ्तगू करते थे तो गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होता था कि रिवायत के जुमले ऐसा लगता था कि दो कबूतर जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी इतना उनके अंदर वो
0: एक
1: तशबीह है मोहब्बत की
0: मोहब्बत की जो तशबीह दी गई है। तो एक प्रैक्टिकल हमारे सोसाइटी के अंदर आज मोबाइल के आने के बाद और मोबाइल के यानी कि मसलन लोग थके आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम थके हुए हैं और मोबाइल पे हस्बैंड जो है पूरा टाइम बैठे रहते हैं, और ये मुझे जब तक ये बीमारी नहीं थी मोबाइल वाली तब तक हमारे वीडियोज़ भी नहीं जाते थे, लेकिन जो है लोगों को ये समझ में लोगों के लिए आना चाहिए कि आप जो भी मोबाइल में कर लें जब तक आपका घर जो है उसके अंदर सुकून और मोहब्बत का माहौल नहीं है, ना आप सेफ़ हैं, ना आपकी फैमिली सेफ़ है, ना आपका फ्यूचर सेफ़ है। और ये बहुत ही एविडेंट सी चीज़ है जहाँ पर हम लोग को अहले बैत की ज़िंदगी से जो है वो लेना चाहिए। एक एस्पेक्ट और बीबी की ज़िंदगी के अंदर इसमें
1: जी
0: माजद सिर्फ एक
1: जी
0: और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मौलाना ने फरमाया कि वो जिस मर्तबे भी थी इस्मत के मर्तबे भी थी, इससे कभी कभार हमारे अंदर फिर वही शक आता है कि वो
1: जी
0: तो
1: वो तो है
0: मासूम थी हम इधर हैं, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन कभी कभार होता है कि ये सब जो हैं वो खुदा दादी चीज़ें थी कि खुदा ने इनको दी थी
1: अता की
0: अता की थी, हालांकि जब आप यही बीबी की तारीख देखें इस्तेवाद से पहले की भी

0: जिस तरह मतलब कम सनी में जो है वो
1: शेबे अभी तालिब में जाना
0: बीबी खदीजा का गुजरना, हज़रत अबू
1: जी
0: तालिब का गुजरना, शेबे अभी तालिब में जाना, 3 साल उधर रहना, और वो जो मुश्किलात हैं गज़ा का ना होना और कम मतलब खाना कम था, ये कम था, मुश्किलात। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जिसके थ्रू उन्होंने जो हैं वो ये चीज़ें सीध की। और ज़ियारत में भी है लिखा हुआ, बहरहाल वो शायद वो शहादत और उस तरफ शायद ज़्यादा इशारा हो, लेकिन या मुमतहना
1: इम्तिहान
0: इम्तहना के
1: जिसका लिए
0: अल्लाहु लदी
1: कबला
0: खलकी
1: यखलुक
0: कबल
1: की
0: अन यखलुक
1: यखलुक।
0: की, के ए मुमतहना के ए वो खातून जिनका इम्तहान लिया गया, आपको उस परवरदिगार ने, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने आपका इम्तहान लिया जिसने आपको खल्क किया, आपकी खल्क करने से पहले इम्तहान लिया, और उस इम्तहान में आपको साबिरा पाया।
1: जी
0: तो
1: हाँ, यानी
0: ये
1: देखें
0: एक्सपीरियंसेस हैं
1: यकीनन
0: जिनके थ्रू जो है वो इंसान अपने आप को बनाता है, और मतलब
1: नहीं, यहाँ पे हमारा ये मौजू नहीं है, यानी इसमत हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बाद दफ़ा इसमत की वजह से ये गलतफहमी पैदा होती है, क्योंकि मकाम इसमत पर हैं इसलिए मिसाल के तौर पे उन्हें तो वो मुश्किल नहीं होती जो हमें होती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जबकि ये चूँकि अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन फ़कत ये कि जो कुछ मिला जैसे आपने भी इशारा किया उन जहमतों की वजह से मिला है, यानी उन मुश्किलात की वजह से मिला है, उस सब्र की वजह से मिला है जो मिला, बस ये अगर इसमत भी है तो ये ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि
0: बिल्कुल।
1: वो
0: अगर खुदा दादी होती तो हज़रत जहरा का कोई कमाल नहीं होता,
1: वो तो किसी
0: यानी
1: को भी खुदा दे
0: सिर्फ
1: देता,
0: यानी
1: बिल्कुल
0: कोई और ये क्लेम कर सकता है, लेकिन इन ज़ात में वो कुव्वत व कुदरतें हैं, वो बिलकुव्वा
1: हाँ, वो
0: कुदरतें हैं, और वो
1: मिलाक की
0: जी
1: बुनियाद पर जब है इसी
0: जी
1: वजह से कमाल है, अगर
0: जी
1: बगैर
0: तो
1: मिलाक के हो तो कमाल नहीं
0: इसमें
1: है।
0: सिर्फ एक ही, इसमें हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो कि देखिए इस्मत का एक किस्मत जो है वो खुदा दादी है,
1: जी
0: लेकिन रैंडम नहीं है, वो मेयार की
1: हाँ,
0: वजह
1: वो
0: से।
1: मेयार
0: और
1: की वो
0: बिल्कुल
1: यकीन, यानी
0: जी
1: अगर वो मुश्किलात ना उठाते, अगर वो उस तरीके से उसमें साबिर नहीं, इसमें इसी में के
0: इस्तेदाद नहीं
1: जो
0: होती है,
1: आपने जिसमें
0: बिल्कुल
1: कहा कि
0: नहीं,
1: फवजद है कि साबिरा, इसके जो आगे है
0: बिल्कुल
1: कि जो इम्तिहान लिया और उसमें आपको साबिर पाया,
0: बिल्कुल
1: तो अगर इस्मत भी अगर
0: ये
1: खुदा ने
0: खिलकत
1: पहले
0: से
1: से ली
0: पहले की
1: है
0: गुफ्तगू है
1: जी,
0: जी। और वो फिर आपने ज़िंदगी में देखा
1: जी
0: कि जितने
1: उनको
0: जिन सख्तियों से
1: जी
0: बीबी की ज़िंदगी
1: बस
0: गुजरी है उसमें
1: हाँ, ये सख्तियों की तरफ आते हैं तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में कभी कभी ये होता है कि मसलन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होती हैं, और क्योंकि हम लोग ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बहुत सारे हमारे फैमिलीज़ जो होते हैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मौलाए कायनात अक्सर वक्त जंगों में है, 70 से ज़्यादा जंगें हैं, उसके अंदर घर पे मौलाए कायनात का ना होना, आज की तरह उस ज़माने में फैसिलिटीज़ का ना होना, अरब की मक्का मदीना की शदीद गर्मी, मुश्किलात, सख्तियाँ, और 9 साल की मैरिड लाइफ में 4 बच्चों का होना और एक बच्चे का जी,
0: शहीद हो
1: शहीद हो
0: जाना,
1: जाना
0: यानी ये है। और ये तमाम ज़िंदगी जो है वो उसके अंदर एक चीज़, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि हम शेबे भी तालीब में जाते हैं, बीबी की ज़िंदगी 2 से 5 साल की ज़िंदगी जो है शेबे भी तालीब में गुजरी, सख्तियों का दौर है, खाना नहीं है, गज़ा नहीं है, भूख है, बीबी जब शेबे भी तालीब से बाहर निकलती हैं तो 6 साल, उसी साल में हज़रत खदीजा का
1: ये रहलत है,
0: की
1: उनकी
0: रहलत है, फिर
1: शहादत
0: उसके
1: है।
0: बाद जो है मुश्किलें हैं, रसूल अल्लाह के ऊपर हमले हैं, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, वहाँ पर बीबी जो हैं 6-7 साल की उम्र में एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, घर पे जो है रसूल अल्लाह का ख्याल बीबी रख रही हैं। तो पूरी ज़िंदगी में हम एक चीज़ देखते हैं, कॉन्स्टेंट एफर्ट, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, कॉन्स्टेंट मुकाबला, कॉन्स्टेंट जिहाद, कॉन्स्टेंट इस्तकामत दिखाना, और वही चीज़ जब शादी होती है और थोड़ा सा शायद बीबी की ज़िंदगी में जो सुकून आया हो, वो जो है मदीना आने के बाद शायद थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सुकून आया, वो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कंटिन्यूस स्ट्रगल है। अच्छा, एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ जो रहबर मुअज़्ज़म ने तहलील की है वो ये कि रहबर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अली जैसा एक शख्स जो इंटेलिजेंट भी हो, जो ताकतवर भी हो, और जिसके अंदर कुव्वत व कुदरत भी हो, और यानी कोई लिहाज से किसी से कम नहीं हो, लेकिन उसके पास इतना खाना नहीं होता था कि घर पे वो खाना ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कि ये इसलिए नहीं था कि अली के पास था नहीं, बल्कि ये इसलिए था कि अली के पास जो होता था वो उम्मत मुस्लिमा में अली तकसीम कर देते थे। लेकिन कभी बीबी ने नहीं कहा कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो रहबर तहलील करके कहते हैं, कभी बीबी ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों क्यों मैं ये कुर्बानी दूं, बल्कि हमेशा बीबी ने ये सवाल किया कि जब दीन को ज़रूरत पड़े तो मैं क्यों नहीं। यानी यहाँ पर ये

0: है। तो हम जब देखते हैं कि वो फैमिलीज़ हमारे यहाँ जो स्ट्रगल कर रही हैं, मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, और ऐसे हालात में हम कैसे बीबी को, उन बीबी को वो अपने लिए रोल मॉडल बना सकती हैं?
1: देखिए, ये मुश्किलात जो हैं इनको आप ब्रश असाइड नहीं कर सकते, ये हकीकत है ज़िंदगी की। तो ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते कि देखें, अगर आप मुश्किलात को इग्नोर करें, मतलब इनको आप अहमियत ना दें। लेकिन जो इनकी ज़िंदगी से हमें ये समझ आता है कि खुशी के लिए जो है वो एक पेश नियाज़ या एक प्री रिक्विज़िट जो है वो पैसा होना या मटेरियल बिलोंगिंग्स होना नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इनसे समझ सकते हैं। उसके अलावा बहरहाल वो बाकी जो चीज़ें हैं जो उलमा भी और अहादीस में भी आया है कि ये जो इंसान का जो ईमान है, इंसान का जो तवक्कुल है, इंसान की जो जो इत्मीनान है कल्ब का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मतलब उसकी जो खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है उससे जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए आप जब देखते हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी और इमाम अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसे दो लोग जब आते हैं, तो उसका, मुझे जहाँ तक समझ आता है, उसका जो राज है वो उनके खुदा से जो है वो क़ुर्ब है, खुदा से जो है वो नज़दीकी है, जो उनका ईमान है उसकी वजह से जो है, जो वो हकीकत देखते हैं कि दुनिया की क्या हकीकत है या आखिरत की क्या हकीकत है या इन मादी चीज़ों की क्या हकीकत है, उनको देखते हुए, उनको समझते हुए वो जो है इसलिए वो हर चीज़ को। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये ज़रूरी है कि उनका मर्तबा, जिस मर्तबे पे वो हैं, फ़र्ज़ करें जैसे सूरह इंसान में जो ज़िक्र हुआ या जो मिसालें आपने ज़िक्र की, वो हम ये ना समझें कि मैं अभी जिस जगह पे हूँ मैं भी उस तरह के, आप फ़र्ज़ करें घर पहुँचे और आप अहलिया जो है वो कहती हैं मैंने तो सब कुछ दे दिया, अब घर में कुछ भी नहीं है, ना बिस्तर है ना खाना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ मरातिब हैं और बिल्कुल हर चीज़ की तरह जैसे ज़िंदगी में होता है वो एक वन स्टेप एट अ टाइम हमें उधर तक
0: जी
1: पहुंचना है। तो
0: मैं,
1: इसको हम ऐसा ना लें कि ये जो जो बीबी की ज़िंदगी है मैं उधर अभी पहुंच जाऊं, क्योंकि
0: हाँ,
1: ये एक
0: लेकिन उस समत में बढ़ने की
1: बिल्कुल,
0: कोशिश करें,
1: लेकिन
0: कदम
1: कोशिश नहीं,
0: बाकायदा
1: ज़रूर करें,
0: जरूर
1: लेकिन
0: करें। मैं इसके अंदर एक ही पॉइंट सिर्फ ऐड करूं, फिर आप इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करिएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आज गाज़ा में, लुबनान में, वो ख़वातीन जो हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, हज़रत ज़ैनब को अपने लिए रोल मॉडल बनाती हैं, वो कैसी कैसे आज मुश्किलों का मुकाबला कर पा रही हैं।
1: बिल्कुल
0: यानी उनके भी घर नहीं हैं, वो भी मुश्किलों में रह रही हैं, घर टूट गया है। एक खातून है, उसका घर टूटा हुआ है, घर टूटे हुए पे वो खड़ी हैं, वो बेटा खड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत से कमाया था, घर टूट गया, क्या हो गया? वो कहती है, घर टूट गया तो क्या हो गया, इज्जत है, गैरत है, आज हम लोगों के पास हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, घर तो फिर से बन जाएगा।
1: और मारूफ जो उनका जुमला है, खुदा इंशाल्लाह उनको महफूज रखे और उनको जो है वो
0: कामयाबी इंशाल्लाह।
1: उनको कामयाब करें इंशाल्लाह, जितने लोग गज़ा और लबनान में हैं। लेकिन जो मारूफ तरीन जुमला जो हर किसी सुनाई देता है वो है हस्बुनल्लाह
0: वो
1: व
0: निवन है
1: निअमल
0: मालवा के पास
1: वकील, कि हमारे लिए खुदा काफ़ी है,
0: काफी
1: मेरी
0: है,
1: जो खुशी है, मेरा जो जो सुख है, ये
0: यानी
1: इस बात से
0: शहादत
1: नहीं,
0: के वक्त भी जो है वो
1: बिल्कुल,
0: कह रहे हैं हस्बुनल्लाह व निअमल
1: क्योंकि
0: वकील,
1: उन्हें कुरान का जो
0: तो रूल
1: जो
0: है,
1: जो रूल है, कुरान का जो
0: वादा है।
1: वादा है या कुरान का जो मैसेज है वो समझा है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का मतलब कि हमारे लिए खुदा काफ़ी है, मेरे पास अच्छा घर हो अल्हम्दुलिल्लाह, ना हो हस्बुनल्लाह, अच्छी गाड़ी हो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की अता की हुई है, लेकिन अगर ना हो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और उससे बेहतर मेरे लिए कोई ख्याल रखने वाला
0: ख्याल
1: नहीं
0: रखने
1: है।
0: वाला नहीं। अच्छा, देखिए हम बीबी
1: जी
0: की सीरत की
1: जी
0: तरफ अगर
1: हाँ,
0: पलटे हैं,
1: पलटें इसमें
0: जी
1: गज़ा और लबनान का
0: जी अगर
1: मौजू
0: आप कुछ
1: ऐसा है
0: ऐड
1: कैसे
0: करना
1: है,
0: चाहें तो ऐड।
1: तो इसको अगर वापस पलटते हैं इसमें, तो देखिए यानी ये जो आपने इकतसादी मुश्किलात की बात की, इसके अंदर एक पहलू तो यही है कि कभी बीबी ने शिकायत नहीं की, और वो हदीस भी है कि जब मौलाए कायनात ने कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया खाना नहीं था घर में, तो बीबी ने ये कहा कि मुझे पैगंबर ने कहा था कि अली से सवाल ना करना। यानी मैं, और एक जगह पे ये भी है कि मैं इस बात से
0: सवाल ना
1: डरती थी,
0: करना को एक्सप्लेन करिए
1: सवाल ना
0: प्लीज़।
1: करना, यानी अली चूँकि इतने खुदा के रास्ते में मशगूल हैं उस इलाही कामों में, तो बीबी से अपनी हाजतों के लिए कोशिश करना, उससे सवाल ना करो। और एक जगह खुद बीबी कहती है कि मैं इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा कि मुझे ये था कहीं ऐसा ना हो कि आप ये ना कर सकें और उसकी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो एक पहलू
0: यकीनन यह है कि उसमें सब्र इक्तसाद यानी फाइनेंशियल मुश्किलात में, लेकिन एक और जो उसके अंदर जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि खुद बीबी इन मुश्किलात के अंदर हाथ भी बटा दी थी। यानी बाद जगह ऐसा है कि वो जो है वो कपड़ा बुनती थी या धागा बुनती थी और उसको जो है वो बेचा जाता था, और उससे जो पैसे आते थे वो घर के खर्च के अंदर शामिल होते थे। तो एक ऐसे हमारे चूंकि बैलेंसिंग हमारा टॉपिक है कि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो जहाँ तक हो सकता था उसके अंदर शरीक थी। इस्लाम भी जो है वो इसके मुखालफत नहीं करता। देखें आज जो मुश्किल है वो ये बीबी का फाइनेंशियल सेंस अगर हम देखें तो वो जितने जो कुछ फदक बीबी को मिला था या और जो और अम्वाल आपके थे, खुद उसका हिसाब किताब रखना कि वो क्या था, उससे कितनी इनकम आती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना कि वो कहाँ कहाँ पहुँचे। तो इस लिहाज से इकतसादी जो शऊर था बीबी का वो बहुत ज़्यादा था। सब्र एक चीज़ है, फिर इस मुश्किल इकतसादी में कुछ कोशिश करना कि किसी चीज़ से कुछ कमाने से घर की आमदनी को बढ़ाया जा सके, ये जो है वो एक और पहलू है। तो इस्लाम में इसको कमाल देखता है इकतसादी शऊर होने को। जो चीज़ आज मुश्किल हो गई है वो ये कि सारा कमाल यही हो गया है। अगर किसी के अंदर फाइनेंशियल सेंस है, कोई खातून बाहर जाके काम करती है या कुछ अर्निंग कर सकती है तो वो बाकमाल है, लेकिन वो जो अपने बच्चे की तरबियत कर रही है, जो अपने शोहर के लिए घर को पुरसुकून बना रही है, उसके अंदर कोई कमाल नज़र नहीं आता। जामिया जो बीबी का जो कमाल है कि जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस तमाम चीज़ों का होना, वो ये है कि सारे पहलू हमें उसके अंदर एक साथ नज़र आते हैं, कि हत्ता फाइनेंशियल मुश्किलात के अंदर भी वो घर की आमदनी बढ़ाने में भी शरीक हैं।
1: अब हम बीबी की ज़िंदगी के जैसे रहबर मौज़म कहते हैं कि बीबी की ज़िंदगी के अंदर एक रहबरी नज़र आती है, बेमानाए कामिल, यानी कि हर एस्पेक्ट में बीबी के अंदर हमें नज़र आता है कि एक लीडर है बीबी, यानी एक रहबरी उनके अंदर नज़र आती है। अब ये एस्पेक्ट भी है कि जहाँ इज्तिमाई मुश्किलात हैं वहाँ पर इज्तिमाई रोल जो बीबी का है, सोशल रोल जो है बीबी का, उसकी तरफ लास्ट में अगर हम गुफ्तगू करें और लास्ट में जो है अगर कोई इसके बीच में क्लैशेज़ हैं तो इसको कैसे हम रिजॉल्व करें, तो इसको अगर हम लोग जाएं बीबी की इज्तिमाई ज़िंदगी की तरफ जाएं कि इसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक जो है रसूल अल्लाह की मक्का के हालात में बीबी का कंट्रीब्यूशन है, मदीना में है, जंगों में है, मौलाए कायनात के इज़दवाज के बाद है, फिर रसूल अल्लाह की शहादत के बाद, रसूल अल्लाह की रहलत के बाद, और फिर उसके बाद जो है बीबी की खुतबात और बीबी का कयाम, ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अगर
0: देखें
1: इसमें कोई चीज़ अगर आप लोग टच करना चाहें।
0: इसमें अहम चीज़ ये है, अगर हम इसको एक यानी उस पैरामीटर अगर सेट करना चाहें तो पैरामीटर जो है वो ये है कि जिस तरीके से कुरान के अंदर है कि वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ये जो है फ़कत मर्दों के लिए नहीं है, ख़वातीन के लिए भी है। और ये जो तौहीद है यानी इबादत है, ये फ़कत फ़र्दी नहीं है, इज्तिमाही है। तो अगर फ़र्दी तौर पर खुदा के सामने सजदा रेज होना ज़िम्मेदारी है और ये हमारे से सवाल किया जाएगा, इसी तरीके से माशरे को इलाही उसूलों के ऊपर ढालना या तौहीदी माशरे को ढालना, ये भी जो है वो दोनों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लियाबुदून के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। अलबत्त इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बिल्कुल ज़िम्मेदारियाँ एक तरीक़े की हैं ना, हदफ एक है लेकिन मदार अलग अलग है, ऑर्बिट्स अलग अलग हैं। मर्द की कुछ ज़िम्मेदारी ऐसी हैं कि उसका जो फोकस एक जगह पे ज़्यादा है, ख़वातीन की जो हैं उनकी ज़िम्मेदारियों में तरबियत औलाद उसका फोकस ज़्यादा है, लेकिन ना शोहर ये कह सकता है कि तरबियत औलाद तो मेरा काम नहीं है, ना ये खातून कह सकती है कि माशरे के अंदर जो है किसकी हाकिमियत है, हक हाकिम है नहीं है, बातिल जो है वो अगर हाकिम हो रहा है तो मुझे इससे कोई नहीं, मेरा काम तो जो है वो घर के अंदर है, ऐसा नहीं है। ये दोनों पहलू क्योंकि इसका ताल्लुक उसी तौहीद से है, इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जब माशरे के अंदर कुफ्र फैला हुआ है या जुल्म जिस वक्त फैला हुआ है, नूर नहीं है, तो वो अहले बैत की खवातीन सबसे ज़्यादा इसके दर्द को महसूस करती हैं। मक्के के अंदर अगर आप देखें तो शेब अबी तालिब है, सबसे पहले उस ज़िम्मेदारी का एहसास करना कि वहाँ पर ये जो है फदाहा या उम्मे अबीहा का जो लक़ब है ये उस जगह पर है, यानी इन मुश्किलात में इस तरीके से ज़िम्मेदारी को अदा किया, इस तरीके से पैगंबर का साथ दिया कि उम्मे अबीहा
1: शेब
0: का।
1: अबी तालिब को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें शायद हमारे व्यूअर के लिए क्या हुआ
0: शेब
1: था।
0: अबी तालिब यानी एक जो है वो एक मकाम है, जनाब अबू तालिब की मिल्कियत है, उनकी प्रॉपर्टी है। मक्के के अंदर हुआ ऐसा कि एक काम कंप्लीट बायकॉट किया गया कि जब ना कोई इनसे चीज़ खरीदेगा ना कोई इनसे जो है उनको कोई चीज़ बेचेगा,
1: मुसलमानों को मुहासरे
0: मुसलमानों
1: में
0: को
1: लेके टोटली बॉयकॉट किया।
0: बॉयकॉट किया गया। जब हर तरीके से बॉयकॉट था सोशल, तो उसके बाद मुसलमान सब एक जगह आ गए, और उसको कहते हैं वो जो जगह थी उसको कहा जाता है वो दर्रा, यानी एक तकरीबन शायद वैली शायद मुनासिब उसके लिए लफ्ज़ हो, कि वो वहाँ पर तमाम मुसलमान थे और उसके अंदर जब कोई ख़रीदो फरोख्त कुछ नहीं हो सकती थी, किसी भी तरीके से कोई
1: किस
0: इक्तसादी
1: किस
0: चीज़
1: की
0: नहीं हो
1: स्ट्रगल
0: सकती।
1: थी वहां पर?
0: देखो हर तरीके की स्ट्रगल थी, एक स्ट्रगल तो ये थी कि इंतहाई सख्त हालात थे माली तौर से। बाद दफ़ा ये है कि हदीसों में कि एक खजूर होती थी कई

0: हमारी इमामत जो है वो 22 है कि नज्म बाकी रहे
1: और तफरका ना हो। तो ये दो चीज़ें थी जहाँ पर बीबी जो हैं, बीबी ने क़याम किया। क्यों? क्योंकि अगर इमामत ख़त्म हो जाती है, खिलाफत ख़त्म हो जाती है, सेंट्रल लीडरशिप ख़त्म हो जाती है, तो सोसाइटी के अंदर वो ना नज़्म बाकी रहता है और ना वो सोसाइटी,
0: वो इलाही अहदाफ ख़त्म हो जाएंगे। तो देखें, एक तो मरहला उसका यही था उस जिहाद का कि बीबी चाहती हैं कि ये वापस पलटे।
1: जी
0: सही है।

0: और जिसका जिस तरीके से खुतबा फदकिया शहजादी ने दिया है, जिन हालात में गई हैं, जिस तरह से खुतबा दिया, लोगों के ज़मीर को झिंझोड़ा, तो एक तो उसी ज़माने के लोगों को देख के कि अगर हक़ छिन गया तो वापस मिले। लेकिन एक और पहलू भी जो शहजादी के मद्देनज़र है, जो हमें तमाम क़राइन व
1: जी
0: वाक़यात से नज़र आता है, वो ये कि अगर ये शॉर्ट टर्म में ये चीज़ वापस नहीं मिलती तो कम अज़ कम ये हकीक़त तारीख़ में छुपने ना पाए,
1: जी
0: ताकि ये ज़मीना बाकी रहे कि अगर अभी ये वापस नहीं पलटा
1: तबीयन हो जाए,
0: तो ये तबीन हो जाए कि हक किसका था, ताकि आइंदा ये ज़मीना बाकी रहे,
1: दोनों चीज क्लियर हो जाए, हक किसका
0: हक
1: था
0: किसका है,
1: और
0: बातिल
1: बातिल कौन है।
0: बातिल
1: यानी
0: कौन है।
1: दोनों चीज बीबी ने जो है खुतबे के अंदर आश्कार कर दिया कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, और अपने दलील और इस्तेदलाल। जो चीज़ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बीबी ने जो अप्रोच ली है खुतबे में वो इमोशनल अप्रोच नहीं है, बिल्कुल रैशनल अप्रोच है, इल्मी अप्रोच है। इल्म और लॉजिक को रैशनैलिटी के हिसाब से चैलेंज कर रही है कि अगर किसी को किसी के पास लॉजिकल और रैशनल आंसर है तो आप वो उसको बयान करें। तो बीबी आती हैं एक जैसे कि वो माहौल के अंदर बीबी आके दिफा करती
0: दिफा
1: हैं,
0: कर
1: और हत्ता उसके अंदर भी एक और चीज़ मैं इसकी तरफ इशारा मैं वो करना चाह रहा था कि मसलन जो आज के हालात हैं खुसूसन लुबनान में या मिसाल के तौर पर गज़ा में, यहाँ पर हम देखते हैं कई सौ ख़वातीन ऐसी हैं जिन लोगों ने, शायद वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो फोटोग्राफर्स हों, चाहे वो दीगर जगह काम कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने खिदमत को अंजाम दिया है हक को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। तो ये एस्पेक्ट के रेजिस्टेंस में ख्वातीन का रोल, मसलन हम गज़ा में देखते हैं तो माएँ बच्चे की शहादत, बच्चों की शहादत के बाद जो आपने कहा हसबुनल्लाह व नेमल वकील, वो एटीट्यूड, वो रेजिस्टेंस का वो जो है घर के अंदर, माँ जो है वो रेजिस्टेंस को ज़िंदा करती है। अगर वो माँ के ज़रिए से घर में रेजिस्टेंस ज़िंदा है तो घर रेजिस्टेंस वाला बनता है, और फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ख़वातीन जो हैं वो
0: खुद
1: माशरे में भी आके बिल्कुल, कहने जिस तरीके से हमारे मराजे इकराम रहबरे मौज़म सब कहते हैं कि मसलन अगर ज़रूरत हो तो स्पीच दे सकती है, कॉन्फ्रेंस में बात
0: बिल्कुल
1: कर सकती है, गुफ्तगू कर सकती है।
0: बिल्कुल
1: और यानी आप जहां पर मसलन आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर आपको मौका मिल रहा है, आप स्पीच दे रही हैं, तो वो इस्लामी शरायत के साथ, हिजाब के साथ अपने हक को बयान करना, हक को गुफ्तगू के अंदाज में चीजों को पेश करना, ये हमारे यहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पर जायज भी है। और यही बीबी की सीरत से अगर हम दर्स लें तो शायद एक बहुत
0: बिल्कुल
1: बड़ा
0: ऐसा ही
1: दर्स है।
0: है कि देखिए
1: जी
0: वहाँ पे भी हमें नज़र यही आ रहा है कि एक लोग वो हैं कि जो मैदान में हैं, यानी अपने बच्चों को भेज रहे हैं। एक थे जो खातून 10-11 साल बाद साहिब औलाद हुई थी, उसके बेटे बच्चे दोनों शहीद हो जाते हैं, टोइन थे बच्चे, जुड़वां बच्चे, और वो कहती है कि अपने बच्चों से मुखातिब हुआ, कह रही है कि मेरे बेटों खुदा के रास्ते में शहादत नुकसान नहीं है, ये घाटे का जो है वो सौदा नहीं है। तो एक तरफ तो वही है कि उसको उस वक्त लड़ना है, और दूसरा वही बीबी का पहलू कि हिदायत का पहलू बाकी रहे, यानी हक दुनिया के सामने आशकार रहे कि सही क्या है गलत
1: आने
0: क्या
1: वाली
0: है,
1: नस्लों के
0: के
1: लिए
0: लिए
1: भी
0: हमेशा जो है वो हक आशकार रहे जाए।
1: आशकार रहे। जी तो ये इज्तिमाई पहलू। एक आखिरी सवाल अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें कि बैलेंस के सिलसिले में, जैसे अभी कुछ बातें हुई कि अगर कोई उसके बारे में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए कि प्रायोरिटी एक औरत के लिए हमेशा तरबियत औलाद है, फर्जंद है। अगर जहां पर क्लैश होता है कि एक औरत के लिए अगर मसलन वो उसके उसके जॉब को चूज करना है या उसको जो है बच्चों की, अगर जॉब कर रही है जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत पे असर हो रहा है तो औरत क्या करेगी, और किन शरायत में वो बैलेंस को क्रिएट किया जाए, अगर इसके बारे में कोई पॉइंट ऐड करना चाहे।
2: तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ बच्चों की तरबियत नहीं बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी, चाहे वो शौहर हो या बच्चों की तरबियत हो या एक इन्वायरमेंट को जो क्रिएट करना हो, तो वो जो है प्रायोरिटी। और फिर जैसे आपने जिक्र किया कि वो जो बैलेंस वाला एस्पेक्ट है वो उसी तरह, जिस तरह जितना हम सीरत को समझेंगे, जितना तारीख को समझेंगे, जितने कवायद को समझेंगे, जितने प्रिंसिपल्स को समझेंगे, जितना, तो ये फहम जो है बहुत ज़रूरी है ताकि इंसान जो है हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने शराइत के मुताबिक जो है, क्योंकि एक सोल्यूशन आप सबको नहीं दे सकते हर किसी के लिए
0: जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल, लेकिन वो जो जो कवायद हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपनी जगह हैं, और फिर वो कौन कौन किस किस तरह से अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, तो
0: जी
2: उस तरह से।
0: देखिए प्रायोरिटी बिल्कुल वाज़े है कि यानी इसमें इस्लाम ने जो घर को और इसको वही एक अहम चीज़ समझ के तरबियत औलाद तो कोई मामूली समझ के नहीं, माँ के जो हवाले किया है घर को। अच्छा इसमें सिर्फ एक चीज़ ये कि यकीनन ये प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें दूसरी तरफ से ये है कि मर्द की भी जिम्मेदारी बनती है कि बाज़ जगह वो कुछ अपने कुर्बानी दे के ख़वातीन के लिए उस ऑप्शन को खोले। भाई एक दिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो आप वर्क

0: फ्रॉम होम करके बच्चों को देख ले, खातून अगर अपने जाना चाहती है पढ़ने वो जा सके। या जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं कि जो अपनी पढ़ाई कुछ तरीके से मैनेज करते हैं कि वो खवातीन के लिए पढ़ने के इम्कान को फराहम कर सकें। ये बहाना नहीं बनाते कि तुम्हारी जिम्मेदारी चूँकि घर है इसलिए मैं तो जा रहा हूँ पढ़ने, उसके बाद फिर मैं जॉब पर जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं कहीं दोस्तों से भी जाऊँगा, और तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम यहाँ पर बैठो। तो इससे पहले कि वो टकराव आए, बहुत सारे टकराव इसी तरीके से अगर शोहर साथ दें तो बहुत सारे टकराव हल हो सकते हैं कि भाई आप थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से मैनेज करें कि जो है खातून के लिए ये फराहम हो ये फुर्सत के वो पढ़ सके, वो जो करना चाहती है वो कर सके। लेकिन उन सारी चीज़ों में निगाह अगर ये होनी चाहिए, ये है कि मुझे खुदा ने जो है वो ज़िम्मेदार बनाया इस घर का, तो फिर वो जहाँ पर वाकई यानी टकराव आएगा तो उसके लिए भी फैसला करना बिल्कुल यानी आसान है। कि ये ज़हनियत बाकी रहनी चाहिए कि खुदा ने मुझे एक अहम ज़िम्मेदारी दी है जो किसी और को नहीं दी, और ये ज़िम्मेदारी का देने का मतलब यह कि खुदा ने इस लायक समझा, तो ये ज़हनियत रहे। और फिर जो है वो बहरहाल, और अगर कभी इस्लाम ख़तरे में आता है तो वो फिर एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसके अंदर जो है वो घर औलाद हर चीज़ जो है वो खातून जो है वो कुर्बान कर देती
1: इसमें
0: है।
1: एक एक नुक्ता शायद वही इम्पोर्टेंट होगा कि जो हमारी निगाह है
0: वर्ल्ड
1: जिंदगी
0: व्यू की,
1: वर्ल्ड व्यू, जहानबीनी, निगाह, जिस तरह से भी आप किस लेंस के थ्रू हम देखते हैं, वो कभी कभार हम ये देखते हैं कि हम माशरे की वजह से या कल्चर की वजह से या कभी कभार वेस्टर्न कल्चर की वजह से वो ख़ास जो हैं वो हमारी हमारी सोच को जो है एक समथ में एक डायरेक्शन में
0: इन्फ्लुएंस करते हैं।
1: इन्फ्लुएंस किया जाता है। बहरहाल टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इंटरनेट है, हर जगह से अगर आपके पास वो यार, और दूसरी तरफ से अगर मेरे पास इस्लाम जो कह रहा है, खुदा जो कह रहा है, रसूल जो कह रहे हैं, या मासूमीन अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं, उसकी अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो, उनकी सीरत की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो फिर सिर्फ एक तरफ से तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दूसरी तरफ से नहीं मिल रही। तो और इस
2: वायरस मिल रहा है, एंटीवायरस नहीं मिल रहा है,
1: इस तरह कह लें, तो उसको जो है फिर समझने के लिए इसलिए ये ज़रूरी है कि ताकि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये अभी फ़िलहाल घर का काम कर रही हूँ लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं मतलब कुछ और, उसकी अपनी जगह है अगर चाहे तालीम के लिए हो या कोई भी और मकासद हो उसके लिए, लेकिन इसकी अहमियत को
2: इसको खुद इबादत समझ के अंजाम,
1: इसको इबादत समझ के इसके इसके फ़ज़ल जो इसके बारे में आया है रिवायतों में आया है, इसका जो इसके सवाब है, जो इसका जो
2: असर है,
1: खातून का असर है या खातून का जो मर्तबा है, उन चीज़ों को समझे।
0: और उसकी टेक्निकलिटीज़ भी हैं, आसान भी नहीं है। अगर आप तरबियत के ज़मीने में आते हैं तो खातून को इस सिलसिले में वाकया यानी आलिमा होना चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसे,
0: तो ये भी नहीं है कि चले सवाब बहुत है लेकिन काम तो ऐसा ही है कि मतलब जो है ना कोई दम यानी ऐसा काम है कि कोई भी कर सकता है, नहीं। माँ को उन चीज़ों को समझना काम भी सख्त है, यानी घर को सबके लिए, तमाम घर वालों के लिए जो है उसको पुरसकून बनाना, बेहतरीन उसके अंदर माहौल फराहम करना, ये वाकई सख्त काम है, आसान काम नहीं है।
1: बाहर के काम से ज़्यादा सख्त,
0: ज़्यादा सख्त है बस जगह पर
2: जी,
1: बाहर के काम से ज़्यादा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, आप लोग आए स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। बीबी ज़हरा इंशाल्लाह कबूल करें, इंशाल्लाह उसका अज्र बीबी ज़हरा इंशाल्लाह अता करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, अपने फीडबैक्स ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह अब और नए प्रोग्राम्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।
3: अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वलीयकल फरज।
4: एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ प्लेस वेयर दे फील सेफ, सिक्योर, वैल्यूड, इंस्पायर्ड एंड लव्ड। वेलकम टू आवर मुंतसिर इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, where learning begins with care, confidence and compassion. Give your child a place to belong, learn and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.